या कि दादा मेरे कि मुस्को डोला कि बीमारी बाजे कि जीस तुरो टारुवी लगा सिगिले आपे हाथ टारुवी लगा सिगिले आपे